0: You're listening to ycradio.org, the voice of today's generation.
1: धोखाधड़ी चेतावनी. अपना क्यूनी लॉगिन पासवर्ड या MF ए कभी साझा न करें. कृपया निम्नलिखित बातों को याद रखें. अपने पासवर्ड या MF ए कारकों को कभी भी किसी के साथ साझा न करें. कैंपस और क्यूनी IT आपसे यह जानकारी कभी नहीं मांगेगा. यदि आपने स्वयं लॉगिन प्रक्रिया शुरू नहीं की है तो किसी भी MF ए अनुरोध का उत्तर न दें. संदिग्ध या अप्रत्याशित टेक्स्ट संदेशों और ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अटैचमेंट को खोलें. यदि आपको लगता है कि आपने अपना पासवर्ड या MF ए कारक साझा कर दिया है, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया है या गलती से कोई संदिग्ध अटैचमेंट खोल लिया है, तो सहायता के लिए अपने कैंपस हेल्प डेस्क से संपर्क करें. यह क्यूनी की ओर से एक धोखाधड़ी चेतावनी घोषणा है.
2: Get the word out with YC Radio. Give your department, program, event, or student activity an additional voice with a YC Radio public service announcement, PSA. Airing a PSA on YC Radio is a simple and effective way to complement your existing outreach efforts while expanding your message to students, faculty, staff, and listeners both on and off campus. Whether you're promoting an upcoming event, recruiting volunteers, highlighting a campus service, or sharing important information, we'll help you create a clear, professional PSA that gets your message heard. Creating a PSA is quick, easy, and free for York College departments, student organizations, faculty, and staff. For more information or to get started, contact 718-262-5293. Promote your event, share your message, reach the York College community with YC Radio. Visit ycradio.org, the voice of today's generation.
3: We served our country like those before us.
4: You know, it was a dangerous era. All of Vietnam was dangerous.
5: The carnage of war left an indelible mark on me.
3: We came back and built lives. As time went on, we faced new challenges and found support to handle them.
6: I went to the VA, talked to my doctor.
7: I started doing groups. I started doing one-on-one counseling.
3: At MakeTheConnection.net, you can hear our stories and find tools and services available to you.
8: What's good? You're listening to YCRadio.org, the voice of today's generation. It's Exile.